0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनैबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: स्वप्नबाट विचलित गरिरहेका छन्। छाट्नु भनेको एउटा प्रक्रिया हो, जहाँ एउटा नयाँको लागि बाटो बनाउन पुरानोलाई काट्नुहुन्छ। आफ्नो विगतका पुलहरूलाई जलाउनुहोस्, ताकि तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको लागि राखेको उज्जवल भविष्यमा अगाडि बढ्न सक्नु भएको होस्। आजको वचन सुनाइद्वारा परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
1: प्रिय श्रोता, प्रभावशाली बाइबल शिक्षक तथा आत्मिक मार्गदर्शक शोन भिक्टरद्वारा लिखित सन्देश हाम्रो आफ्नै नेपाली भाषामा सुन्नुभयो रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ। मेरो विश्वासमा चमक ल्याउनुहोस्।
2: कार्यक्रमका बारेमा कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 68 55 33 39।
1: हौस् त, कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।
3: आछि नेना दिगु दु निछ्या आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माइ फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ। छु छि याखचा वो तोता तगु महसुस याना चुनगु दुला। जय मसी जोजलपाजी अमृता महर्जन स्पार्क माइ फेथ जीवनिया क्षण श्रृंखला भाग 40 के शीर्षक सितान लसकुस। गुब्ले गुब्ले झिस दखले अप मथिना यानपी मनु त झिगु निति दखले अप अर्थ दुपी झिस झिगु नुग लगानी यानगु खतन ह्याबले छगु हे भावना बी मफु झिस इम त मथिना याना थे इम्स ह्याबले झि त मथिना याइमु अथवा छगु इले इम्स झि त मथिना याइगु जुइफु अले झि इपी निसे कनिष्ठ स्वापु दुगु जुइफु। तर आव सम्बन्ध कोचाल कि उम्स थत आ मदका निर्णय यागुनी वा छे जया दुजया विशेष पास्पी सिगुनी इमगु प्रस्थान जित असहाय महसुस याना चुङ्गुदु। आ जिमके जिमगु गहिरो भावना हो चिन्ता पुङ्कित सु मधु थजागु अवस्था जिस सुयागु यो पिनमिपि सम्बन्ध न्याब्ले झिस चाहे जु कथ जुइमुख अले अछे जुइबले झि त याकचा वो तोता तगु महसुस सुई थो झिस अनुभव या फैगु दक्ले बामलागु भावना मध्ये छगु ख ठुकी या वास छुख यो मनु त्यस याक्ल हे थगु नुगले उगु शून्यता पुङ्के त मेम मालेगुले तर थो नुगु स्वापु को मजा एक निराश सुई सत्य थोहे ख कि झिस याबले भरोसा याइफु छगु हे जक स्वापोदु भालागु वो बामलागु इलेन वो ख झिगु परमेश्वर बा वा झि प्रभु येशु ख्रिस्ट लिसे या स्वापु मत्ती निचागु अध्यायु निगु पत्के धाटगुदु अले झि सेना थे छिम्स इम्त सेने कने याना फुक्क ख माने या कि न्य संसार फुना ममतले छि जिपिना पहे दै यसु हे जक ख गुमिसा छित गुम्ले तोती मखो जी छित मेफि सुयागु बारे थथे वचन बि फैमुखो ठो संसारे थुली मछी मनो तदु उपि उत्सुकतापूर्वक छिगु पासा जुइमा धका छिगु लिक्क वै तर इमगु नियत शुद्ध मजु अले छित इम त विश्वास याई बले इम्स छिगु नुगले पला तया छिगु दुखे टोता हुनी यदि छि याकचा दुख लोमुङ्गु व मतिना मधुगु महसुस याना चुना दिगु दुसा छिगु बिचा यीशु ख्रीष्ट लिसे स्वर्गीय जुइगु खे केन्द्रित याना दिस कलसी सोङ्गु अध्यायु छगुनि पेङ्गु पदके धाटगुदु छिपि ख्रीष्ट नाप तु माना वोगुनि छिम्स स्वर्गीय खजक्क मन्ती अन स्वर्गीय यीशु ख्रीष्ट परमेश्वरया जवे चुना दिगुदु संसारियागु ज्याख मन तया जुई मते परु स्वर्गीय ज्याख जक्क मन तया चो छादासा छिपि सी ढुङ्कु पिख अन परमेश्वर छिम त ख्रिस्ट लिसे मुका त गुदु ख्रिस्टे छिमुगु जीवन ख वेक झाइ बोले छिपि न वेक नाप दु खने दै अले त धनी यो पिनियन मिपि स्वर्ग दैगु छन् त लोमनी गुठ्या मुखु स्वर्ग दैगु छगु ठ्याख गणछित पुङ्क मसिकेगु पुङ्क मतिना याइगु व सदाया निधि थे महसुस याइगु जुई प्रकाश निछगु अध्याय सुङ्गु पेङ्गु पदके धारगुदु सिंहासन तसल थथे दाल दया हम हगु सहजी ताल स्व आपर्मेश्वर मनु तलिसे दि वेकल इपि नापहे चुनादि इपि वेक या मनु दजुई परमेश्वर थहे इपि परमेश्वर जुया इपि लिसिहे चुनादि वेकल इमगो मिखा चोङगु खोबी सुचुक व्यादि आ अन इपि सीमाले मुक्त दुखे चुने माल खुए माल अले छुन दुख जुई मखुत फुलाङ्गो ज्याख फुक्क मदे याउन हुने धुल्कल यसो जित चुने त बालाको छेजक्क ब्यादिगु मुखु वेकल जित अझन महत्वपूर्ण खन ब्यादिगु ख वेकल झिगु मिखा चुङ्गु फुक्क खोबी हुयाबी चिस हान गुब्ले याकचा वा मतुम ट्याके फैमुखु पृथ्वीदेखि मास्ति वगु स्वापो याबले ज्यालखे जुई धका बिचा बसम्बी मफु यकु इपे सफल जुई मखु तर जे छिट बसम्बी फुके एसुलिसे छिगु नीति तस्क बालक जुई अले वेक ल छिट मेपिन्से आज चाहे पुगु स्वापु तेगु नीति मार्गदर्शन यानादि वेक या त विश्वास या नापाङ्गु कोरन्थी झिन्सोङ्गु अध्याय युडुङ्गु पदके धया तगुदो अचुसा विश्वास आशा व माया थुपी श्रोता धासा दया हे चुनी तर उपी मध्ये टक्ले तदङ्गुला माया ख यो पिनमेपी परमेश्वर लिसे जिगु भविष्य या त थुली त याइगु दैगु जिस वेक लिसे व मेपी लिसे इनेगु मतिना अजु यागु अनुभव ख व मतिना अनन्त काल ताक जित सान्त्वना बित विश्वास योग्य जुई थौयागु वचन येना दिगुले परमेश्वर छिसकसितन सवाबीमा चोइमुसे नियनमिपि सिमसा नकतिनी हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षक व आत्मिकी लपु केनादिम सोमन भिक्टर चोयादिगो हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माइ फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगो मोबाइल नम्बर दु 9868553349 9868553349 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जयमसी।